0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
2: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
4: ईद और हम आपके साथ साथ, आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
5: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
6: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
7: बकरा ईद मुबारक।
2: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां?
8: चलेगा।
2: ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
8: एक मैं, एक तू।
2: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से पहले।
9: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें। खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 स्वाबी की तरफ से नशर किया गया।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टोल मीनावाल उता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उस्ता पिंजम मरले लस मरले द यो कनाल देर शुमरलो और मुखिजनो कमर्शियल और द कुरुन द पारा प्लाटुना मिलावीगी और कम चिप आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवलिश है कुशादर उडुना द उबो सहूलत और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनों और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।

14 अगस्त 1947, 14 अगस्त 2016, एक ख्वाब, एक हकीकत, एक रोशनी, एक वादा इस मुल्क से वफा करने का जो हमें अभी पूरा करना है। मेरे मुल्क का हर इंसान कह रहा है, तुम सलामत रहो 1000 बरस, हर बरस के हो दिन 50,000। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।

0: सर्दी हो या गर्मी, रेडियो दिल पर आपके संग संग।
1: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावालता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उसका पिंजा मरले लस मरले द यो कनाल दिर शुमरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और द कुरुन द पारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवल इशे कुशादर उडूना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पकी हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे शाह साहिब इफ्तिहार साहिब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पर दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी। मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636। साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपज मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629। शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। द दीदा जीब कालू वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काली के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े नु पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
0: दादी रेडियो दिल तासु दजड़ा आवाज।
2: ईद खुशी और पाकिजगी का पैगाम देती है। नमाज ईद के बाद पार्कों और खुले मैदानों में कचरा ना फैलाएं और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें ताकि सबके लिए ये दिन खुशगवार हो। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।

0: जनाब तासुम रात लेशे काल को लेशे पसी पर 938 283 495 वर्जु कालिव साइड ताजी मुख सरसुक दियो दकम देने जी अस्सलामु अलेकुम वालेकुम अस्सलाम माखपल सलाम वागे सुखा खपा नशे दासवे मा दासे उरीजुन की नहीं दीजी वर्जु कालिव साइड ताजी कम देने जी सुक जी अस्सलामु अलेकुम
1: वालेकुम अस्सलाम
0: जी जनाब सुख खबर कवे द कम जाना
1: जी दी गाने फरमाइश में द कणो खबर पके मगाओ का दा गाना प्रिय छ लगे ओ
0: खा खा ज सही रे सही रे सही रे सही रे होले ना रोर जाना होले ना

0: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: मसाजिद से बुलंद होती तकबीरें, घरों में मीठी सवैयों की खुशबू और हर चेहरे पर खुशी की मुस्कुराहट, तमाम सुनने वालों को दिल से ईद मुबारक। आप इस वक्त सुन रहे हैं रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी, जहां ईद के इस खूबसूरत दिन पर जारी है ईद स्पेशल लाइव ट्रांसमिशन। आपके पसंदीदा गाने, खूबसूरत पैगामात, दिलचस्प गुफ्तगू और ईद की खुशियों से भरपूर लम्हात। सो स्टे ट्यून्ड, अपने दोस्तों और प्यारों के साथ ईद की खुशियां बांटते रहिए सिर्फ दिलबर FM 94 सवाबी, द रियल साउंड ऑफ सेलिब्रेशन। نند اختر ورځ ده، نند خوشحالی ورځ ده، پرله پسې سندرې او خوږې خبرې، نو ریډیو مبدلوي
2: دلبر FM 94 سوابي د هر زړه آواز.

0: कसाई कसाई आ गया।
1: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
2: बकरा ईद मुबारक।
3: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न,
4: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न,
3: ये है मौसीकी और मोहब्बत का हसीन इम्तिजाज। यस, द सेलिब्रेशन इज ऑन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी।
4: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी,
3: जहां ईद के इस मौके पर जारी है नॉन स्टॉप ईद एंटरटेनमेंट, ग्रेट म्यूजिक, फन टॉक और सुनने वालों के प्यारे पैगामात। सो डोंट चेंज द डायल, स्टे ट्यून टू दिलबर एफएम 94 स्वाबी, द वॉइस ऑफ स्वाबी।
4: दिलबर एफएम 94 स्वाबी, द वॉइस ऑफ स्वाबी।

0: ये है खुशियों की आवाज, ये है ईद का जश्न,
1: ये है ईद का जश्न।
2: ईद के दिन जल्दी ना करें, जिंदगी सबसे कीमती तोहफा है। ट्रैफिक कवानीन की पासदारी करें, मोटर बाइक पर हेलमेट पहने और गाड़ी चलाते वक्त एहतियात करें, ताकि ये ईद खुशियों भरी हो, हादसों भरी नहीं। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से पेश किया गया। ईद खुशियों का नाम है, खतरनाक खेल का नहीं। हवाई फायरिंग किसी मासूम की जान ले सकती है और आपके लिए कानूनी मसाइल पैदा कर सकती है। अपनी और दूसरों की खुशियों को महफूज बनाएं, हवाई फायरिंग से गुरेज करें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया। नए कपड़े और महंगे खानों के साथ किसी यतीम या जरूरतमंद के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना सबसे बड़ी खुशी है। ये पैगाम बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलवर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया गया। हमसायों के आराम का ख्याल रखें, खुशियां बांटें, शोर ना फैलाएं, ऊंची आवाज में म्यूजिक बजाना और शोर शराबा करने से दूसरे लोग परेशान हो सकते हैं। अपनी खुशियों के साथ साथ दूसरों के सुकून का भी ख्याल रखें। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तावन से पेश किया जा रहा है। ईद खुशी और पाकीजगी का पैगाम देती है। नमाज ईद के बाद पार्कों और खुले मैदानों में कचरा ना फैलाएं और अपने माहौल को साफ सुथरा रखें, ताकि सबके लिए ये दिन खुशगवार हो। ये पैगाम आपके लिए बेलाडोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।

स्टूडियो में खैर लेमिन नासर स्टूडियो के ना आस्ते का ना और वही गुल्ला जी वही गुल्ला जी दा शिकार रे वही दा सॉन्ग चे गम है का ना दारा तलक प्रीत छ हुआ है और मां दरवाख लहा खैर लेमिन आ मजे ते वाख लवा और हां

सिफर 938 280 400 वचन में बांधी सासु बैक टू बैक कॉल रवान दी और सासु खवांदवारे खवांदवारे

0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
1: Stars of Pal Channel, Radio Dilwar.
0: Welcome to FM 94, broadcasting live from Swabi, from 5 a.m. to 1 a.m.
2: आप सुन रहे हैं FM 94 रेडियो दिलबर स्वाबी.
3: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन.
4: आप सुन रहे हैं दिलबर FM 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन.
3: रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे. कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर FM 94 स्वाबी.

0: आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम सवाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन, कुरान की तिलावत, सुन्नत भरी बातें और दिल को सुकून देने वाले लम्हे। यहाँ हर लफ्ज में ईमान की रोशनी है। दिलबर एफएम 94 सवाबी। दिलबर एफएम 94 सवाबी।
1: ये रेडियो दिलबर सवाबी है और आप रेडियो दिलबर एफएम 94 सवाबी से इस्लामी नशरियात सुन रहे हैं।

सवाबी और इसके मुजाफात में आजान का वक्त हुआ जाता है, बाकी इलाकों के रहने वाले अपने मकामी वक्त के मुताबिक नमाज अदा करें।

0: रेडियो दिलबर अब कभी भी कहीं भी सुनिए हमारी वेबसाइट पर लॉग ऑन टू www.radiodilbar.pk।
1: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टोल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ पिंज मरले लस मरले द यो कनाल दिर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और द कुरू न मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवले शे कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सोबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है 0336-30-34-636।
2: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स ले तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकटों लपारा खपज मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629। शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह द दीदा जीब कालो वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ा बल वाले दो पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
3: बोल मेरे बकरे खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे तुझे लेकर जाऊं कहां?
4: चरागा।
3: ओ मेरे बकरे गाएगा क्या?
4: एक मैं, एक तू।
3: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे वो भी कुर्बान होने से पहले। हकीकत समझो या फसाना अपना समझो या बेगाना हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है अब शुरू कर दो घास खाना।
5: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
6: ईद और हम आपके साथ साथ आप सबको ईद की खुशियां मुबारक हो।
7: अरे कसाई आ गया कसाई कसाई आ गया।
8: अरे ओ सांबा कितने बकरे हैं।
9: बकरा ईद मुबारक।
10: दादी रेडियो दिलबर स्तासु दजरावास।

0: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
2: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
3: बकरा ईद मुबारक।
4: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
0: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ईद और हम आपके साथ साथ।
5: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टोल मीनावाल द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उस पिंजम मरले लस मरले दयो कनाल दिर्शु मरलो और मुख्तलिफ किस्मा साइजनो कमर्शियल और द कुरुन द पारा प्लाटुना मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवल इशे कुशादर उडुना द उबो सहूलत पल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टोल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336-30-34-636।
6: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स ले तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लोई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुर्रहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकटों ला पारा खपजी मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
7: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। द दीदा जीब कालो वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन सी मुआरे सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े दो पता याद साथे शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
8: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें, खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।

0: आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
1: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
2: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
3: बकरा ईद मुबारक।
4: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
0: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं। ईद और हम आपके साथ साथ।
5: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना तूल मीनावाल दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबता उसका पिंजा मरले लस मरले दयो कनाल दिर्शु मरलो और मुख्तलिफ किस्मा साइजनो कमर्शियल और कुरुन द पारा प्लाटुना मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवल इशे कुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टोल मीना वालो ता द गट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है 0336-30-34-636।
6: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स तरफ ना टूल मीना वालो ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुलरहमान प्लाजा सवाबी मुंसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपजी मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
7: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालो ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह। द दीदा जीब कालो वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मेवार सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े नु पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
8: बच्चों को आतिशबाजी और पटाखों से दूर रखें, खुशियां महफूज हों तो ईद यादगार बनती है। आतिशबाजी और पटाखों से हाथ जल सकते हैं और हादसात भी हो सकते हैं। अपने बच्चों को इन खतरात से दूर रखें और एक महफूज ईद मनाएं। ये पैगाम आपके लिए बेला डोना कॉस्मेटिक्स पाकिस्तान और रेडियो दिलबर FM 94 सवाबी की तरफ से नशर किया गया।

0: हमने ऐसे जो कलेक्शन पॉइंट्स बनाए हैं, आप सिर्फ वहां से उठा के उन कलेक्शन पॉइंट्स तक ले आए, या अगर आप वहां तक भी नहीं आ सकते तो एक कॉल करें तो हमारा जो नुमाइंदा है वो आपके पास पहुंचेगा, वहां से वो जो जितनी बाकियात है वहां से उठाएगा और जहां पे उनको डिस्पोज ऑफ करना है तो वहां तक उनको पहुंचा के दफन कर देंगे बिल्कुल। तो इसमें थोड़ा सा आपने जो है जनाब उनकी मदद करनी है। अगर कोई हमें टीएमए से सुन भी रहा है तो अगर वो अपना पैगाम चाहते हैं तो आप बिल्कुल हमें कॉल कर सकते हैं, और जनाब 09165150 पे आप हमें कॉल कर सकते हैं और आप अपना मैसेज बजाते खुद भी कह सकते हैं, फोन कॉल पे आप मिला के अपने सुनने वालों को बता सकते हैं जनाब कि आपने कैसे और किस प्वाइंट पे ये चीजें जो है वो लेकर आनी है।
1: जी
0: और इसके साथ साथ जनाब एक मरहला और होता है, और ये जो अगर आपको याद हो जैसे अभी हमने एक वो पोएट्री सुनी भी तो उसमें एक जिक्र किया गया दो पीरों का कि माँ बाप से बढ़ के जो है ना पीर नहीं होते। तो इसके साथ ही एक रिलेशन में जनाब दो पीर और आते हैं जिनको आप बड़े प्यारे अल्फाज में सुनते हैं, अम्मी जी और अबू जी। अभी हमारे पास भी एक दोस्त ऐसे मौजूद हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि आप अपनी अम्मी जी और कहते हैं तो ज्यादा बेहतर बता सकेंगे। तो अगर हमारे जो लिसनर्स हैं वो हमें सुन रहे हैं और अगर उनके भी ऐसे मतलब अगर ससुराल हैं, ससुराल से कोई गिफ्ट आया उनको या सुस्टिंग्स भेजना चाहते हैं तो जनाब बिल्कुल आप जो है अपना मोबाइल उठाएं और 09165150 पे आप हमें कॉल करें, और यहाँ अगर आप हमें SMS करना चाहते हैं क्योंकि अगर बात करते हैं आपको शर्म आती है तो जनाब लफ्जों में मेरे ख्याल में कोई शर्म नहीं होगी क्योंकि ना आपको कोई देख रहा है कि आप लिख क्या रहे हैं। तो 03141310221 जो है जनाब हमारा SMS के लिए नंबर है, इस पे आप हमें SMS कर सकते हैं। तो जनाब बिल्कुल हम अपनी तोपों का रुख करेंगे अली यासर की जानिब और अली यासर से जानेंगे उनकी जुबानी कि इनको जो है वो ईद गिफ्ट जो आया है क्या आया है और अम्मी जी ने क्या भेजा, अबू जी ने क्या भेजा, ये ज्यादा बेहतर तरीके से बताएंगे। जी
1: जी सर, ऐसा है कि उसने ईदी में कपड़े भी भेजे थे और इसके साथ मतलब दो सूट मेरे लिए थे और एक सूट जो है ना मेरी अम्मी के लिए, मेरी नानी है उसके लिए भी।
0: सही
2: अच्छा, बास्केट भी उन्होंने भेजे।
1: नहीं ये मेरे खुद बना है।
0: कॉल रिसीव करते हैं वापस।
1: अच्छा ठीक है सर,
0: अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो, और जनाब कॉल हो गया ड्रॉप। जी
1: अच्छा, तो उसने मतलब मेरे लिए भी कपड़े भेजे हैं, मेरी अम्मी के लिए और इसके साथ साथ मेरी बहन के लिए, भाई है उनके लिए, मेरे अब्बू के लिए और मेरी नानी के लिए भी। इसके साथ साथ उसने परफ्यूम भी भेजे हैं और वॉच भी है, इसके साथ साथ सैंडल्स भी है और इसके अलावा मतलब एक कैप भी है। तो बस ये मेरी ईदी थी और इसके साथ साथ 5000 रुपये भी ईदी में मिले।
0: अरे वाह, आपके तो मजे हो गए।
1: जी जी,
0: अस्सलाम वालेकुम। और जनाब हमारी आवाज शायद उनको पसंद नहीं आ रही क्योंकि आप अपना वाकया शेयर कर रहे हैं तो एक्सपीरियंस है ना भाई अभी।
1: जी
0: मम्मी जी अब्बू जी के लिए कोई ऐसा मैसेज बताएं
1: जी
0: कि एक बेहतरीन किस्म का मैसेज हो जिससे दोनों तरफ के अम्मी अब्बू खुश हो जाएं।
1: अच्छा असल में ऐसा है ना कि मतलब दोनों के लिए अगर हम बात करें तो मतलब जिसने मुझे पाला है, उसने मुझे बड़ा किया है तो उसकी रिस्पेक्ट थोड़ी ज्यादा बनती है। ठीक है, मतलब उसने मतलब बचपन से मुझे इतना मतलब सख्ती से उसने मुझे बड़ा किया तो जितनी सख्ती है उसने बर्दाश्त किया तो उसका हक थोड़ा ज्यादा बनता है। तो उसके लिए तो मैं मतलब अगर बात करूँ ना तो मतलब वो जो कहती है ना कि पैरों के नीचे तले जन्नत है, मतलब तो
0: जिनके पैरों के नीचे जन्नत
1: जन्नत
0: वालदा के पैरों के नीचे जन्नत।
1: नहीं मैं अभी कह रहा हूँ ना।
0: अच्छा।
1: तो वो मेरी वो माँ है जिसने मुझे पैदा किया। ठीक है, तो वो जन्नत जो है ना उसके बराबर तो कोई भी नहीं। ठीक है, और रही दूसरी अम्मी की बात, हाँ तो दूसरी अम्मी की भी रिस्पेक्ट लाजमी है, उसकी भी रिस्पेक्ट होनी चाहिए।
2: उनके पैरों तले जन्नत नहीं,
1: मेरी बी की जो मेरी बी
2: जन्नत नहीं है।
1: तो दोनों को मतलब रिस्पेक्ट तो दोनों को देना चाहिए।
0: लेवल तो जनाब दोनों का बराबर है। ठीक है, उसमें हम इसको नहीं देखते कि उन्होंने आपको जन्म दिया या वो आपको अपनी बेटी दे रहे हैं।
1: लेकिन एक बात है, अभी मैं आपके साथ
0: आपको बेटी दे रहे हैं
1: मैं। हाँ बिल्कुल, मैं आपके साथ ये बात शेयर करना चाहता हूँ। असल में वो जो मतलब ससुराल में मेरी मतलब जो अम्मी अब्बू है तो असल में मेरी जो बीवी है ना उसका कोई भाई नहीं है।
0: सही,
1: तो वो माँ
0: उसके भाई भी है
1: ना मुझे के बस आप मेरे बेटे ही है, मतलब वो मुझे इतनी
0: जी जी जी जी बोले
1: मतलब इतनी मतलब उस वो मुझे इज्जत देती है ना कि वो कहती है मतलब कि मुझे वो कमी नहीं रही मतलब

0: मतलब कि मतलब मैं आपको बस वही समझता हूँ और मुझे बहुत ज्यादा इज्जत देती है इतनी ज्यादा कि मतलब मेरे जो खुद घर वाले वो भी बहुत ज्यादा खुश है कि ये जो मेरा
1: शादी के बाद भी इज्जत मिले,
0: ये जो मेरा रिश्ता हुआ है ना इससे सब बहुत ज्यादा खुश है, क्योंकि मतलब वो बहुत ज्यादा और मेरी इज्जत भी करते हैं, मेरे माँ बाप की भी, बहन भाइयों की भी, सबकी बहुत ज्यादा इज्जत करते हैं, तो मतलब बदले में मैं और मेरे घर वाले उसको भी बहुत ज्यादा इज्जत देते
2: हैं। जी बिल्कुल, रिश्ता जो है वो जो है इक्वालिटी का, बराबरी का है, क्योंकि इसमें कोई ऊपर कोई नीचे नहीं है, दोनों है जहाँ बराबरी का रिश्ता है, तो जब बराबरी का रिश्ता है तो उसमें फिर रिस्पेक्ट लेवल दोनों का एक सा ही होता है। और जैसे आप कह रहे हैं वो आपको कहती हैं कि आप इसके भाई भी नहीं, सॉरी मतलब वो मंगेतर भी हैं, तो जैसे उनका बेटा नहीं है तो उन्होंने आपको कहा आप मेरे बेटे हैं, तो हम जो तो ये कंफ्यूजन हो गया कि बाद में ये ना कहने
0: का। असल में आप अभी बात कर रहे हैं ना, तो अभी ईद से पहले की बात थी, मैं अमी से कह रहा था मतलब आप इतने खर्चे कर रही है, तो वो कह रही थी अभी मेरा एक और भाई भी है, उसकी भी मंगनी हुई है, तो अम्मी ने कहा कि मतलब हमारी एक बहन है, ठीक है, तो उसने कहा कि पहली तो मेरी एक बेटी थी, अभी तीन बेटियां हैं।
2: बिल्कुल ऐसे ही, बिल्कुल ऐसे ही है, ये समझने समझने की बात है जनाब, कि जितना आप अच्छा समझेंगे इस चीज को तो उतना ही आपके लिए बेहतर होगा। जी अब्दुल्ला, आप कुछ ना पूछना चाहेंगे इनसे?
1: नहीं सर, बस मैं तो जो है कुछ की बातें सुन रहा हूँ, मुझे तो खैर पर्सनल एक्सपीरियंस भी इस बारे में नहीं है कि क्या होता है क्या नहीं होता, और
2: मुझे इतना तो पता नहीं यार, ईदी तो मिलती है हर बच्चे को, मिलती है कुछ
1: नहीं, मुझे ईदी नहीं मिलती ना, मुझे नहीं मिलती, हाँ मुझे ईदी नहीं मिलती,
0: इसको बचपन में मिलती थी वो भी दो रुपए,
1: नहीं नहीं वो वो एक अंकल मुझे दो रुपए देते थे, बाकी मुझे बड़ी अच्छी अच्छी ईदी मिलती हैं, और वो तो मेरे
2: रुपए सब पे भारी होंगे ना यार,
1: बिल्कुल यही बात है, ये
2: देखो उनका खलूस है, उनका खलूस है आपके लिए, हर ईद पे उन्होंने निकाले होते थे, दो रुपए मैंने अब्दुल्ला को देने हैं,
1: देने हैं। वो एक हमारे बचपन का मैंने किस्सा शेयर किया था, वो जो है ना वो आप नहीं थे तो ये उनकी तरफ
0: मिस इंटरप्रेट नहीं कर रहा मैं,
1: आप उनको जो है एक्स्ट्रा इंटरप्रिटेशन करके तो ये बातें, और बाकी जो है ना खैर अली यासर साहब की जो है ना उनकी ये पर्सनल जो है मैं ये कहूंगा जर्नी है, पर्सनल ग्रोथ है, और मुझे नहीं पता, मुझे तो सिर्फ ये पता है कि एक अम्मी के पैरों तले जन्नत है, मुझे नहीं पता और किन किन के पैरों तले जन्नत है। तो ये चीजें हैं, बाकी जो है ना ये हम इनसे जानेंगे, ये हमें गाइड करेंगे कि कैसे चलना है, कैसे
2: पूछना चाह रहे हैं आप, तो
1: फिलहाल मेरे माइंड में कुछ नहीं है, बाकी जो है ना अगर कुछ हो वो मैं जो है ना पूछूंगा वक्तन फवक्तन जो है, मैंने तो बस यही पूछा था कि वेस्ट कोट जो है ना ये भी उन्होंने दी, यानी एक तो यही सवाल था तो हमें करनी है उन्होंने,
0: ये तो मैंने बनवाया है।
2: अच्छा चलो ये तो होगी ना उनकी बात, आपने क्या दिया?
0: मैंने क्या दिया? मैंने
2: घर वालों ने नहीं, आपने क्या दिया?
1: अच्छा हाँ सही, नहीं आपने
2: जवाब आना थोड़ा सा मुश्किल है, जैसे हम बात करते हैं आप, क्योंकि दोनों वालिदैन जो है से भी और उनकी तरफ से भी, और बराबरी की चीज, और बिल्कुल जनाब जब उनके पास हम यही कह सकते हैं ना मतलब कि एक इकलौती औलाद है, तो अपनी औलाद दे रहे हैं आपको, तो मतलब इतनी इज्जत आपको वही मिल रही है कि अपनी इज्जत आपको दे रहे हैं, तो इससे बढ़ के दूसरी कोई बात नहीं होती, तो बिल्कुल बिल्कुल समझने वाली है और इनको आने वाली
0: सबकी इज्जत करनी चाहिए, चाहे मतलब आपके अपने माँ बाप है, चाहे आपके ससुराल है, तो हर किसी का अपना एक हक है और हमें चाहिए कि हम हकूक जो है ना वो अदा करें।
2: जी बहुत अच्छा मैसेज आपका, इसके अलावा मैं चाहूंगा कि आप अपनी सास ससुर को, बल्कि इवन अगर आप अपनी फियांसी को भी कोई मैसेज देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। सुन रही होंगी मेरे बारे में आपको,
0: सुन रही है जी, अच्छा उसको तो मेरा ये मैसेज है, मतलब आप जो अभी ईद मतलब एंजॉय कर रही है तो उससे मजे ले, और मतलब अपने माँ बाप को जो है ना इज्जत दे, उसके साथ टाइम गुजारे,
2: सही,
0: और इसके साथ साथ मतलब ये जो अभी खाने पक रहे हैं वो खुद तो कुछ बनाती नहीं है, लेकिन जो
2: अभी मैं कहने लगा ये तो फिर चले जाते हैं उस तरफ, चले जाते हैं,
1: यही बात है,
2: कुछ खा पी नहीं,
1: मेरा किसमें एक सवाल है, मेरा एक सवाल है
2: जी,
1: अच्छा मेरा जो है ना इसमें एक सवाल है, वो ये कि जो है मेरा इनसे एक सवाल है, इन्होंने कहा कि अपनी जो है ना अम्मी को टाइम दे, तो क्यों अभी किन को टाइम देते हैं?
0: ऐसा ना हो कि मतलब मेरा मकसद ये था, अच्छा मैं समझ गया, हाँ मुझे तो वो टाइम देती है, लेकिन मतलब मेरा ये कहना था कि उसको भी टाइम दे, क्योंकि वो उसके माँ बाप
1: को टाइम दे,
0: बड़ा किया है, हाँ और ये हर उसके लिए मतलब वो जो बच्चे है ना उसको मेरा मैसेज है कि आप अपने माँ बाप को टाइम दे, और ये जो ईद है ईद पर मतलब अपने जी
1: रिवायत है ना ये भी, हाँ
0: है, और रिवायत, लेकिन अभी मुझे तो पता नहीं है क्योंकि मैं तो सुबह से स्टूडियो आया हूँ, अभी तक यहाँ हूँ, मैंने अभी ये मतलब खुद खाया ही नहीं है, तो उसको
1: नहीं, तो आप
2: आपका जो घर का ट्रेडिशन है वो भी नहीं भेजा आपने, जो कह रहे थे आप कतलम में और क्या कह रहे थे,
1: कतलम में सवैया और चाय और
0: हलवा, नहीं भेजे,
2: नहीं भेजे
0: ईदी।

0: गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
2: उठाए अपने बकरे के नाज़ और नखरे, वो भी कुर्बान होने से पहले। हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
3: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
4: ईद और हम आपके साथ साथ।
5: मुबारक ईद मुबारक।
6: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स, साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स ले तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लुई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुल रहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उमरे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट टू लपारा खपजी मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सीओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398826629। द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावालो ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ ता पिंजा मरले लस मरले द यो कनाल दिर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और द कुरुन द पारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवले शे खुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315-6386-080। शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बशीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर घटे खुशाले डेरी डेरी मुबारक शाह दीदाजीब कालो वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाले दो पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी। खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टूल मीना वालों ता द गट अख्तर घटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और तीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कभी द बेहतरीनों और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है 0336-30-34-636।
4: सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
7: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
8: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं?
9: बकरा ईद मुबारक।

ओके चार लाइव कॉल कर दीजिए 0973 280 495 ढीने लावा के चर्चा से प्रोग्राम था मैच जिस कवल ग्वार है नुपा 0319 1517 094 बांधे हाँ

0: बोल मेरे बकरे, खाएगा क्या? मेरे प्यारे बकरे, तुझे लेकर जाऊं कहां? ओ मेरे बकरे, गाएगा क्या?
1: एक मैं, एक तू।
0: उठाए अपने बकरे के नाज और नखरे, वो भी कुर्बान होने से पहले।
2: द सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर द तौसीफ अहमद खाकसार और द मुकम्मल टीम लखवाना टूल मीनावालो ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर कम की चिबताओ उसका पिंजा मरले लस मरले दयो कनाल दीर्श मरलो और मुख्तलिफ किस्म साइजनो कमर्शियल और द कुरुन द पारा प्लाटूना मिलावेगी और कम छिपा आसान अकसात और कैश तरह ताजु तरला से कवले शे खुशादर उडुना द उबो सहूलत खपल जुमात और स्कूल और नूर हर किस्म सहूलियात पके हम मौजूद दी। सेफ हैंड प्रॉपर्टी अटक शहर मोबाइल नंबर 0315 6386 080।

0: हकीकत समझो या फसाना, अपना समझो या बेगाना, हमारा तुम्हारा रिश्ता है पुराना, इसलिए फर्ज था बताना कि बकरा ईद आ रही है, अब शुरू कर दो घास खाना।
1: इस तरह की चटपटी बातें सुनने के लिए तैयार हो जाएं।
2: खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबे द मैनेजिंग डायरेक्टर शाह साहिब इफ्तिहार साहब और द आरजे अरशद इकबाल लतरफ ना टूल मीना वालों ता द गट अख्तर गट खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह खान दरबार रेस्टोरेंट पा द दो तारीख पूरे बंद हुई और पतीन तारीख पा दोबारा ओपनिंग कवि द बेहतरीनो और जायकेदार खुराकुनो वाहिद मरकज खान दरबार रेस्टोरेंट अंबार इंटरचेंज सवाबी मोबाइल नंबर है दे 0336 30 34 636।
3: ईद और हम आपके साथ साथ
4: मुबारक ईद मुबारक।
2: साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स साद इंटरनेशनल ट्रेवल एंड टूर्स ले तरफ ना टूल मीना वालों ता दलवी अख्तर लोई खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह साद ट्रेवल एंड टूर्स अब्दुर्रहमान प्लाजा सवाबी मुंगसर द उम्रे द हर किस्म पैकेज और द हर किस्म एयरलाइन द टिकट लपारा खपज मुवरे एतमाद सरा राबिता उकड़े सी ओ शाहिद खान मोबाइल नंबर 0398-28-629।
3: आप सबको ईद की खुशियाँ मुबारक हो।
4: मुबारक ईद मुबारक।
2: शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी द इरफान हसन और बसीर हसन लोकवाना टूल मीना वालों ता दगट अख्तर गटे खुशाले डेरे डेरे मुबारक शाह द दीदा जीब कालो वाहिद मरकज द क्वालिटी और वजन जिम्मे सरा काले के तैयार भी और कुप आर्डर जोड़ावल वाड़े नु पता याद साते शारजा ज्वेलर्स मीना बाजार टूपी।
5: अरे कसाई आ गया, कसाई कसाई आ गया।
6: अरे ओ सांबा, कितने बकरे हैं।
7: बकरा ईद मुबारक।

आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। आप सुन रहे हैं दिलबर एफएम 94 स्वाबी से इस्लामिक ट्रांसमिशन। रूहानी सुकून, ईमान की रोशनी और दिल को छू लेने वाले लम्हे। कुरान, सुन्नत, अखलाकी सबक और रूहानी गुफ्तगू, ये सब सिर्फ एक जगह, दिलबर एफएम 94 स्वाबी।